0: तो नमस्ते, KZMU मोआब कम्युनिटी रेडियो से बोल रही हूँ दीपाली परमार। 90.1 और 106.7 FM, और मैं जब अपने घर होती हूँ पुणे में, भारत में, मैं www.kzmu.org ऑनलाइन यही रेडियो सुन सकती हूँ, और आप मुझे ये रेडियो पे सुनिए, शुक्रिया।
1: And on 90.7 FM in San Juan County, Utah.
2: Hey, this is DJ Harry, and you're listening to KZMU, Moab Community Radio, 106.7 and 90.1 FM, on the web at www.kzmu.org. Keeping it real.
1: And on 90.7 FM in San Juan County, Utah.